छु रेड नेपाल ख नेपाल भाषी समाचार जे पेश पाखी निनादिस थौ नेपाल सम्बत चिन्स सब पिखुद तसलाथो चतुर्दशी सोनिगले लिपाङ्गो सोलाथुके खनेतुगो बर्ड फ्लू संक्रमण अपुया चुङ्गुदो पशु सेवा विभाग कथा आर्थक चिन छगु जिल्ला या चेनिगो थासे संक्रमण पुष्टि जुठङ्गु गुदो लोय नियन्त्रण या नीति प्रभावित थासे विशेष सतर्कता नाला चुङ्गुदो विक्रम सम्बत 2082 4 गते मोरङ्गे नापाकुसी बर्ड फ्लू पुष्टि जुटुङका चापा सुनसरी महोत्तरी बारा चितवन नवलप्रासी ए यल खोप व काभ्रे संक्रमण नाउङ्गु ख पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर उमेश दाहालले कत संक्रमण नियन्त्रण यागुचोले आतक न्यागु लाग खुइगुद च्यासो मल्याक पञ्ची नस्त यादङ्कु दो अथे गुगु लाग चे गुद मल्याक खे व निदो क्विन्टल दाना न नस्त यागु वेक्ल कनादिल लुए नियन्त्रण या त पशु सेवा विभागमा निर्देशक या नेतृत्व ब्रड फ्लू लुए नियन्त्रण कक्ष पोलिस्तार याना सङ्घ प्रदेश व स्थानीय तहलिसे समन्वय नियाना प्रभावित थासे प्राधिक पुच्छ परिचालन यागुदो विभागीय कथा आतक कोदसी प्रदेशीय चापा मोरङ व सुनसरी लिसे बारा महोत्तरी चितवन व नवलप्रासी संक्रमण नियन्त्रण वेदङ्कुदो आ ए यल खोप लिसे काभ्रे या छुसु थासे संक्रमण अझ नखने दया चुङ्गुली विशेष निगरानी एफएकुगु महानिर्देशक डाक्टर दाहाल जानकारी ब्यादिल संक्रमित भाइरस से सुन अनुवंशिक युपा जुगु दु वा मधु दैको पक्का या त राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाली लिसे सहकार्य भाइरस या जिन अनुक्रमण प्रक्रिया न सुरु जुगु विभाग धागु ख विभाग पक्षी पालक किसान त्यत फार्मे जैविक सुरक्षा बायो सेक्युरिटी या मापदण्ड कडा जुइक पालना या त पुलाङ्गो खे या क्रेट हाक्न मछेले त ढुवानी या साधन पूर्ण रूपमा निसङ्क्रमण याना जक फर्म दुने दुत याङ्के त लिसे जङ्गली पञ्ची लिसे खरपाल वा पञ्चिया सम्पर्क मजुके त इनाप यागुदु तथे पञ्ची लिसे चिजन्य उत्पादन या अवसर प्रसार याइबले अनिवार्य रूपमा भेटेनरी दसिपो क्यात नियमित खोप बित लिसे छुन फार्मे अस्वाभाविक रूपमा यको पञ्ची बिरामी वा सिनाचुङ्गो खनधासा थथे लिक या पुस्यवा ज्याकुती जानकारी बित विभाग इनाप यागुदु स्तोरोनर्ती जुयाचङ्गु अर्नीको राज मार्ग अन्तर्गत धुलीखेल खावा सडक बोय या त असार सुङ्गुगु वा निसे चिन्यानु चा नेसिया इले सवारी साधन आउगम्ने रोग याइगु जुगुदु जिल्ला सुरक्षा समिति उगु सडक बे थोहे असार 22 गते निसे वैगु साउन 4 गते तक चानेसिया इले पुङ्के सवारी साधन आउगन बन्द यागु थागु ख उगु सडक बे पिसियागु सम्बन्धे नितनातगु इले टिपर व मालबाग तग ट्रक या त पुङ्को दुहा वे त निश्चित यागु लिसे मेमेगु यात्रुबाग लिसे मेमेको मालबाग सवारी साधन ते त बनिसिया नेत इल निसे सुतेसिया नियात यी तक जक दुमकागु निर्णय यागु समितिया कजिलिसे प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी कनादिगो ख राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पोलिस्ता व व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक या मस्यौदा तयार जुगुदु राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति सुङ्गु खुद लिपा ढुङ्का रक्षा मन्त्रालय मस्यौदा तयार यागु ख थो विधेयक शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थ मन्त्रालय राज सुझाव काया सहमतिगत फिङ्केत कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छुएतेङ्गुदु राष्ट्रिय सुरक्षा व प्रतिरक्षा विशेष अध्ययन अध्यापन व अनुसन्धान या नीति नेपाली सेना या सक्रियता राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी एनडियु पोलिस्ता यातेङ्गु ख भगवान गौतम बुद्ध या जन्मस्थल लुम्बिनी भुटान सरकार निर्माण यातेङ्गु भुटानी गुम्बा या मिग औपचारिक रूपे शिलान्यास यागुदु भुटान या गृहमन्त्री ल्यानपे छिरिङ भुटान या धर्मगुरु उपमहासङ्घ
राजा दोर्जे लोपेन रिम्पोचे लिसे नेपाल सरकार या संस्कृति पर्यटन लिसे नागरिक उडे मन्त्री खड्गराज अधिकारी पौडेल उपस्थिति विशेष धार्मिक विधि कथा गुम्बा निर्माण उले ज्या जुगुदु शिलान्यास ज्याजुले पुटानी लामा गुरु तेसन धार्मिक अनुष्ठान याना भूमि पूजा याना दिगु ख गुम्बा निर्माण या त भुटान र नेपाल दुया सांस्कृतिक धार्मिक लिसे कूटनीतिक स्वप या त अझ बलाकिगु कथ ऐतिहासिक कला कथ सोया चुङ्गुदु भुटान सरकार या गृह मन्त्रालय अन्तर्गत संस्कृति लिसे जोङखा विकास विभाग या महानिर्देशक म्याक्सुद ओजी लुम्बिनी भुटानी देग निर्माण सुरु जुगु भुटान या नीति तसक महत्व जागु व ऐतिहासिक उपलब्धि जुगु यत्ना दिल वेक्ल ध्यादिल लुम्बिनी लाग्या नुगु भुटानी देग निर्माण ज्या झ्याके त भूमि देवी या आशीर्वाद क्या त जीवी थन उपस्थित जुयाको ख थो परियोजना भुटानी बौद्ध परम्परा व संस्कृति या त बुद्ध या जन्मभूमि लिसे स्वाकी भुटान सरकार व लुम्बिनी विकास कोष जति थौने गुम्बा निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र अर्थात् एमओयु लासी तेगु ज्या जुगु ख उगु सम्झौता कथ न्यानाचुङ्गु दुनी परियोजना ह्याकेगु प्रतिबद्धता कार्म याना निर्माण प्रक्रिया ह्याका यङ्कुगु वेक्ल कनादिल राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा प्रतिष्ठान थुगुदे सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ त शिर्पा लल्हागु कोचुगुदु प्रतिष्ठान दे या सिमाना नाप स्वापुदुगु विषयले निरन्तर पैरवी याना देव जनता पक्ष जो मधुगु योगदान याना दिगुली सीमाविद श्रेष्ठ त चिन्सस व चिन छतका नगद लिसे हनापौ ल लाना हनेगु कोचुगु ख प्रतिष्ठानीय नायक प्राध्यापक डाक्टर पार्थिवेश्वर प्रसाद तिमिलसेनिया कथ राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा या निस व नि निकगु पुदी या लसदा ओगु साउन नौ गते उगु हना ज्याजो या तेङ्गु ख सडक डिभिजन सुर्खेत थगु कार्यक्षेत्र दुनी लागु तिथि राष्ट्रिय राजमार्ग सडक सीमा दुनी निर्माण याना तगु छे तहरा पखालिसे संरचना चिन्ज्यानु दुनी चिकेत उज बिगुदु डिभिजन च्याकुति सार्वजनिक सडक एङ 2031 अख सडक अतिक्रम याना निर्माण याना तगु संरचना यातायात सञ्चालन व सडक सुरक्षा पङ्ग बोलङ्गु तहागुदु अजागु सडक या सीमा दुनी निर्माण याना तगु संरचना चिन्ज्यानु दुनी स्वापुदुको पक्ष थपिसे खाली या त च्याकुति उज बिगु ख डिभिजन च्याकुति या कथ फेरि कोरिडोर छिन्चु छेडा सडक कर्णाली राजमार्ग या हरे बाङ्गे सिम्बल दही खोला मध्यपाडे राजमार्ग या सुयदा साई खोला बाटो चौर काल्चे सडक सुर्खेत दैलेख महाबु सडक या सडक सीमा अतिक्रम याना देखा त संरचना सिके त स्वापुदुगु सस्त या त उज बिगु ख सङ्घीय सरकार वैको आर्थिक द निसे सच्ची चुए युनिट ए न्यागु प्रतिशत मत कर मुहेको तयारी यागु इले मनाङ जिल्ला नाप स्वागु लमजुङ या मर्स्याङदे गाउँपालिका लेपतिक मत बितेङ्गुदु म्याग्दी गाउँपालिका पालिका स्थानीय या त वैगु आर्थिक वर्ष निसे सकल छेज पिन्त लेपटिक निगु युनिटक धेवा मुयाक मत इनाबी तेङ्गु ख अमेरिका सूचका तगु नेपा या चिन सोको गु सदी या साकिमुनि गौतम बुद्ध या द्यो या त हाक्न नेपाले हया नुच्छे बहाले विधि नक्सा पलिस्ता यागुदु ए महानगरपालिका पुरातत्व विभाग व सम्पदा अभियन्ता पिनिगु कुतल द्यो या त हाक्न नेपाले हे फुकु ख नेपाल खुया यङ्कुगु द्यो अमेरिका लुया वोगुली अमेरिका या तिब्बत हाउस कलेक्सन नाप सल याना हयागु थका पुरातत्व अधिकृत सरिता सुवेदी ताइदिगु ख भेनेजुला उखुनु बोगु निगु भुखा या हुनी आतक छिन पेस व निम सिगु पुस्ति जुगुदु आन दोलन्द मुनुत छे लाना चुङ्गु धासे मालिकु ज्या जुया चुङ्गुदु सरकार या कथ सिप निगुल्या अपैगु धागुदु राजधानी कार्कास नाप स्वागु लागुइरा राज्य तफुका छ दोलन्द छे दुङ्गु युएन धागु ख फिफा विश्वकप 2026 थौ बहनी वाई पुच या यल पुच या कासा इङ्ल्यान्ड व क्रोएसिया त्याकुगुदु न्युयोर्क एजुगु कासा इङ्ल्यान्ड पानामा या त निग गोल बुकुगु ख इङ्ल्यान्ड नकआउटे
विजेता जुया थेङ्गुदो अथे फिलाडेल्फिया जुगु कास्या क्रोएसिया खानिया त छ ग गोल विरुद्ध निग गोल बुकु गुख थो निगु पुच नकआउटे थेङ्गुदो अथे पोर्चुगल या त बराबरी याना कोलम्बिया पुच या विजेता जुया नकआउटे थेङ्गुदो पुचले पोर्चुगल व कङ्गो नकआउटे थेङ्गुदो आजुया चुङ्गु कास्या अर्जेन्टिना जोर्डन या त निगो गोल यागुदो अथे जोर्डन न पेद ह्य या विश्वकप त्यागु लियोनल मेसिया कप्तानी दुगु अर्जेन्टिना या त छग गोल यागुदो निगु कासे अर्जेन्टिना न्यागु गोल यागु खधासा छगु न गोल नगु मधु तर थौ पुच या सुङ्गु कासे छग गोल नगुदु डेनियङ्क आ पेनु दुने झरी तब्याइगु धागुदु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग वैगु पेनु दुने गण्डकी ओ लुम्बिनी प्रदेश नाप कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश न्युङ्क झरी थेनिगु धागुदु आ कोशी मधेस ओ बाङ्दी प्रदेश या सकल लागा ओ गण्डकी ओ लुम्बिनी प्रदेश या पूर्वी लागा झरी निनाउङ्गु दु थौ देङ्क मौसम हिला न न्याइगु लाप्सा तोइगु वा वैगु नप हिमाली लाग्या चपु कुवा वैगु धागुदु सुदूरपश्चिम ओ लुम्बिनी प्रदेश या तराई लाग्या आपलता नोइगु धुकमा यागुदु मिग सोनिगुले सुई छगु फुटी नेगु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु ख थौ सोनिगुले सुथे न्याता इजुया पेङ्गु मिनेटे लुगु सूर्य शनिलया नेता इजुया छिगु मिनेटे बी नेपाल भाषा बुक कोचाल शुभ्या।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झा सँग सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव युवा के सफलते देश के सुनौलो भविष्य के आधार स्तंभ भेल बतौलने छे। मदन भंडारी मेमोरियल कॉलेज के 25वां वार्षिक उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ओ प्रविधि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के युग में आधारभूत मूल्य नैतिकता के आत्मसात करत विश्व स्तर में प्रतिस्पर्धा करबाक बतौलन। उपराष्ट्रपति यादव शिक्षा से ज्ञान मात्र निर्भर नम्रता अनुशासन सामाजिक उत्तरदायित्व सेहो प्रदान करबाक बतौलन। मदन भंडारी मेमोरियल कॉलेज शिक्षा के ज्योति फैलावे वाला राष्ट्र के लिए सक्षम अनुशासित आ जिम्मेवार नागरिक उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान पहुँचौने बतौलन। उपराष्ट्रपति यादव आजुक युवा में रोजगारी ताकत के मात्र नहीं भ अपन प्रतिभा उद्यमशीलता मार्फत रोजगारी सृजना करबाक क्षमता सेहो रहल बतौने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दल सब देश के सीमा संबंध में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह दिने अभिव्यक्ति के संदर्भ में सदन में पुनः स्पष्ट करबाक चाही माग कैलक। सभा के आजुक बैठक में प्रारंभ में विपक्षी दल के सांसद अपन आसन से उठलाक बाद सभामुख डोल प्रसाद आर्याल हुनका सबके अपन धारणा सदन में प्रस्तुत करबाक लेल समय देने छलथि। नेपाली कांग्रेस के रेणुका काउचा प्रधानमंत्री संसद में स्पष्ट करबाक चाही विषय से पार्टी के महाधिवेशन में प्रस्तुत होब सदन के गरिमा घटल आरोप लगौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के डाक्टर पुष्पराज करील प्रधानमंत्री संसद में उपस्थित होबाक चाही पर जोर दैत सीमा संबंधी अभिव्यक्ति स्पष्ट करबाक चाही बतौलन। ओ नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौड़िल के सरकार पूर्वाग्राही भक पकड़ने आरोप से लगौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद युवराज दुलाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सुदृढ़ीकरण कर दिस सरकार के प्रयास परिलक्षित हेबाक चाही पर जोर दिलन। ओ प्रदेश सभा खारिज कर संघीयता के पुनः संरचना करबाक सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रस्ताव प्रति विमति जनौलन। श्रम संस्कृति पार्टी के आर्यन राय राष्ट्रीयता संग संबंधित विषय में प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित भाग स्पष्ट करबाक चाही माग कैलन। गृहमंत्री सुदन गुरुंग शनि दिन बिना सूचना देने परसा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र के आकस्मिक अनुगमन कैलने। वो देश के प्रमुख प्रवेश द्वार मानल जा वाला बीरगंज भंसार नाका अलौ खलवा टोला सिरसिया पंचोका लगायत के सीमा क्षेत्र के निरीक्षण करवाक संगे स्थानीय संघ अंतर्क्रिया कैलने। भारतीय सीमा संघ जोड़ल गेल नाका से सुरक्षाकर्मी के मिली भगत में भिनसर अरात के समय में अवैध व्यापार तथा तस्करी हुई ताल शिकायत विभिन्न माध्यम से अलाक बाद गृहमंत्री गुरुंग स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा निकाय के बिना कोनो जानकारी देने परिचय हो निक खुला सन सीमा क्षेत्र के वस्तु स्थिति बुझा अनुगमन कैने बताल गेल। अनुगमन के क्रम में स्थानीय तथा प्रत्यक्ष दर्शी सीमावर्ती क्षेत्र में जड़ान कैल गेल सीसीटीवी कैमरा के प्रभावकारी अनुगमन नहीं भेला से तस्करी तथा अवैध कारोबार नियंत्रण में अपेक्षित सफलता हासिल होब नहीं सकल बतौने छलथि। एम्हर जिला प्रशासन कार्यालय परसा के प्रमुख जिलाधिकारी भोला दहाल आ जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुदीप राज पाठक आई अनुगमन के संबंध में हमरा सबके कोनो पूर्व जानकारी नहीं भेल बतौने छथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के संयोजक पुष्पकमल दहाल प्रचंड जल्दी जल्दी में पार्टी एकता करब आ फुर्सत में फिर से विभाजन भक कानब एहन दिन से सतर्क हेबाक चाही बतौलने। जननेता मदन भंडारी के 75वां जन्म जयंती के अवसर पर काठमांडू में आयोजित नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन आ जननेता मदन भंडारी विषय राष्ट्रीय गोष्ठी में यह बात बतौलने। निरंकुश सामंती तंत्र विरुद्ध बीतल समय में एकताबद्ध भक लड़ने स्मरण करत ओ मिल के मात्र सफलता प्राप्त कैल जा सकते प्रश्न कैलन। ऐसे पहले 2074 साल में भेल एकता के नेपाली जनता करीब दू तिहाई मत दक अनुमोदन कैने सेहो स्मरण कैलन। जननेता मदन भंडारी संग ओहि समय में सेहो कम्युनिस्ट आंदोलन एकताबद्ध करबाक संबंध में घनीभूत विचार विमर्श भेल मुदा आई के औपचारिकता देव नहीं पैबते दुखद घटना भेल सेहो बतौलन। अधूरा सपना के पूरा करबाक जिम्मेवारी कतौ ने कतौ अपने सबके कन्हा पर रहल कहित ओ वर्तमान में सब कम्युनिस्ट घटक के सजिया जिम्मेवारी भेल धारणा सेहो व्यक्त कैलन। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले शिक्षा में प्रस्ताव कैल गेल समता कर से गरीब तथा आम जनता के कोनो असर नहीं पड़त बतौलने। आई प्रतिनिधि सभा आर्थिक विधेयक 2083 पर विचार विमर्श के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब दैत ओ बात बतौलने। ओ नेपाल के लगभग 80% बाल बालिका गैर निजी विद्यालय में अध्ययन कर रहला से हुनका सबके कर नहीं लागत से स्पष्ट कैलन। किछ निजी विद्यालय में मात्र समता शुल्क प्रस्ताव कैल गेल
चर्च करत ओ एत मासिक 10,000 टका शुल्क तिरेवाला अभिभावक से करीब 300 टका अर्थात 3% योगदान करबाक व्यवस्था कैल गेल बतौलन। ये रकम सार्वजनिक शिक्षा के गुणस्तर सुधार तथा आम व्यक्ति के सीमांकृत दलित आ न्यून आय भेल समुदाय के धियापुता के शैक्षिक पहुँच अवसर विस्तार के लिए खर्च कैल जेबाक जानकारी दिलन। हुनक हिसाबे छोटछीन योगदान संकलन क के सार्वजनिक शिक्षा के उन्नयन करबाक उद्देश्य के संग समतामूलक नीति आगू बढ़ायल गेल ओ बतौलन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के पुनः संचालन करत। गत माघ 1 गते से कार्यक्रम बंद केने अस्पताल अखार 15 गते से पुनः सेवा शुरू करय लागल अछि। अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर सुभाष प्रसाद आचार्य के हिसाबे अखन बहिरंग सेवा में ई सेवा संचालन करबाक आ किछु दिन पश्चात अन्य सेवा में सेहो विस्तार कयल जायत। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत अस्पताल उपलब्ध करौने उपचार के भुगतानी नहि भेल धरि सेवा बंद भेल छल। हुनक हिसाबे अस्पताल भिनसर 7 बजे से लक 11 बजे धरि आ दिन में 1 बजे से लक 3 बजे धरि 2 बजे धरि बीमा टिकट रोगी के उपलब्ध करात। किछु दिन पहिने मात्र बोर्ड अस्पताल के स्वास्थ्य बीमा से उपचार कयने बापत भुगतानी उपलब्ध करौने छल। अस्पताल विक्रम संबद्ध 2077 साल से नियमित रूप में संचालन करत आयल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत उपचार सेवा संचालन कयने छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नगर क्षेत्र में 2,000 वृक्षारोपण कैलक। शहर के हरियाली तथा वातावरण मैत्री बनेबाक उद्देश्य के संग वृक्षारोपण कैल गेल। आज जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाक नगर प्रमुख मनोज कुमार साह पर्यावरण अभियंता सुरेश शर्मा संयुक्त रूप में वृक्षारोपण क के शुभारम्भ कलन। नगर प्रमुख साह उपमहानगरपालिका के थापा चौक से मुजलिया धर के सड़क खंड में विभिन्न प्रजाति के 2,000 गाछ रोपल गेल बतौलन। रोपल गेल गाछ के संरक्षण के लिए लोहा के घेरा सेहो राखल गेल ओ जानकारी दिलन। बारा के प्रसोनी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के वार्डाध्यक्ष ब्रिज किशोर कुशवाहा अभद्र व्यवहार संबंधी मुद्दा में पकड़ायल छथि। अदालत से जारी भेल पकड़ाव पूर्जी के आधार पर प्रहरी आई हुनका नियंत्रण में लक अथवा अनुसंधान प्रक्रिया आगू बढ़ौलक। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के हिसाबे 37 वर्षीय वार्डाध्यक्ष कुशवाहा विरुद्ध दर्ता भेल अभद्र व्यवहार मुद्दा में अनुसंधान के लिए 2083 बैसाख 17 गते अदालत से पकड़ाव पूर्जी जारी भेल छल। वह पकड़ाव पूर्जी तथा अदालत के अनुमति आदेश कार्यान्वयन करत इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसोनी के प्रहरी निरीक्षक सुमन लामा के नेतृत्व में खटल गेल प्रहरी के टोली हुनका कलैया उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 23 बैराटपुर से पकड़लक। आब खेल समाचार। निको कप महिला T20 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2083 के उपाधि कोशी प्रदेश के महिला क्रिकेट टीम जीतलक। मधेश प्रदेश के खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय मधेश खेलकूद परिषद तथा नेपाल खेलकूद महासंघ के संयुक्त आयोजना में आई पर्सा जिला के वीरगंज में संपन्न भेल फाइनल खेल में नेपाल APF क्लब के 11 रन से हरबैत कोशी जीत हासिल कलक। प्राय अधिकांश खेल जनकपुर धाम के राम जानकी बहुदेश अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में भेल बावजूद एकटा सेमीफाइनल तथा फाइनल खेल पर्सा के वीरगंज में संपन्न भेल। आजुक फाइनल खेल में पहले बैटिंग करित कोशी प्रदेश 4 विकेट के क्षति में 98 रन के मध्यम स्कोर बनौने छल। 99 रन के लक्ष्य सहित खेल मैदान में आयल नेपाल APF क्लब महिला क्रिकेट टीम 19.5 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 87 रन मात्र बनाब सकल। ताई के कारण से 11 रन से पराजित भेल। अमेरिका मेक्सिको आ कनाडा में जारी फीफा विश्वकप 2026 के नॉकआउट समीकरण पूरा भेल। आज संपन्न समूह चरण के अंतिम खेल संगे सहभागी 48 देश से 12 समूह के शीर्ष 2 आ 8 उत्कृष्ट 63 टोली सहित नॉकआउट पहुँचा वाला 32 टोली के निष्कर्ष लागल। विश्वकप में यूरोप से सर्वाधिक 13 टोली नॉकआउट चरण में पहुँचल। एना अफ्रीका से 9, दक्षिण अमेरिका से 5, उत्तर अमेरिका से 3 आ एशिया से 2 टोली नॉकआउट चरण में स्थान बनौलक। नॉकआउट चरण में स्वाभाविक विजेता अर्जेंटीना विश्वकप के डेब्यू टोली केफ भर्डे संग प्रतिस्पर्धा करत। अना साबिक उप विजेता फ्रांस स्वीडन संग खेलत। अना ब्राजील एशियाली टोली जापान पोर्चुगल क्रोएशिया दक्षिण अफ्रीका कनाडा जर्मनी पैराग्वे नेदरलैंड्स मोरक्को आ आइवरी कोस्ट नॉर्वे संग खेलत। अना मेक्सिको इवेडर इंग्लैंड के DR कंगो बेल्जियम के सेनेगल अमेरिका के बोस्निया एंड हर्जोगोविना स्पेन के ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड अल्जीरिया ऑस्ट्रेलिया इजिप्ट आ कोलंबिया घना संग प्रतिस्पर्धा करत। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल वर्दीवास से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा ने बजट से संबंधित आर्थिक विधेयक 2083 और राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी 2083 किए पारित। सड़क दुर्घटना में कमी, कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम से उत्पन्न समस्याओं के समाधान सहित विभिन्न मुद्दों पर सांसदों ने किया सरकार का ध्यान आकृष्ट। पशु सेवा विभाग ने बताया काठमांडू उपत्यका में बर्ड फ्लू फैलने में कौओं का कारण। और सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 14 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने बजट से संबंधित आर्थिक विधेयक 2083 को बहुमत से तथा राष्ट्रीय

0: ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। सभामुख टोल प्रसाद अर्याल ने घोषणा की कि अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले द्वारा प्रस्तुत दोनों विधेयक सदन से पारित हो गए हैं। आर्थिक विधेयक पर 7 और राष्ट्रीय ऋण विधेयक पर 3 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अर्थमंत्री द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को छोड़कर शेष प्रस्ताव सदन ने बहुमत से अस्वीकार कर दिए। अर्थमंत्री डॉ. वागले ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि बजट के माध्यम से ऐतिहासिक कर सुधारों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी विद्यालयों की फीस पर लगाया गया 3% कर गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों पर बोझ डालने के लिए नहीं है, बल्कि सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि चालू आर्थिक वर्ष में पूंजीगत व्यय 35% तक भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगले आर्थिक वर्ष के बजट में सुधार और परिणाम सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। चर्चा में सांसदों ने आयकर से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करने, कर प्रणाली को सरल बनाने और निजी क्षेत्र के लिए समझने योग्य बनाने की मांग की। उन्होंने पूंजीगत व्यय बढ़ाने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रस्तावित कर व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय ऋण विधेयक पर चर्चा के दौरान अर्थमंत्री ने कहा कि विदेशी ऋण सिर्फ निर्धारित परियोजनाओं और आधारभूत संरचना के विकास के लिए लिया जाता है। उन्होंने बताया कि आंतरिक ऋण भी ऊर्जा तथा अन्य उत्पादक परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि ऋण का उपयोग ऐसी परियोजना में होना चाहिए जो भविष्य में स्वयं ऋण चुकाने की क्षमता विकसित करे। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय एवं संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम ने महालेखा परीक्षक की 63वीं वार्षिक रिपोर्ट 2083 सदन में प्रस्तुत की। सभामुख ने राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त विधेयकों के प्रमाणीकरण संबंधी पत्र की भी जानकारी दी। इससे पहले सांसदों ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने और यातायात प्रबंधन में सरकारी निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सांसदों ने आरोप लगाया कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में जानबूझकर वाहन चढ़ाकर हत्या करने की घटनाओं को भी दुर्घटना बताकर समझौता कराया जा रहा है। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून में आवश्यक संशोधन की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जल्दबाजी में एसईई और कक्षा 12 के परिणाम जारी करने के कारण अनेक मेधावी विद्यार्थियों को भी नॉन ग्रेडेड दिखाया गया, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। सांसदों ने फीफा द्वारा एनफा पर लगाए गए अनिश्चितकालीन निलंबन पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे देश की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदेह बताया और जल्द निलंबन हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने ये भी मांग की कि सड़क यातायात प्रबंधन और सरकारी सेवाओं में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सरकारी निकायों पर आर्थिक दंड लगाने का कानूनी प्रावधान किया जाए। बीपी राजमार्ग पर रोशी नदी क्षेत्र में जोखिम के बीच यातायात संचालन का मुद्दा उठाते हुए सांसदों ने वर्षा ऋतु को देखते हुए समय रहते आवश्यक कदम उठाने की अपील की। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेपाल भारत सीमा संबंधी बयान का विरोध करते हुए विपक्षी सांसदों ने सदन में विरोध दर्ज कराया। नेकपा एमाले के सांसद डॉ. पुष्पराज खडेल ने कहा कि सीमा विवाद पर दिए गए बयान के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। श्रम संस्कृति पार्टी के मुख्य सचेतक आर.एन. राय ने कहा कि संसद में जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री द्वारा चितवन में स्पष्टीकरण देना उचित नहीं था। उन्होंने प्रश्न किया कि सीमा संबंधी उनका विवादित बयान देश हित में कैसे माना जा सकता है। प्रतिनिधि सभा की आज हुई दूसरी बैठक ने 4 अलग अलग विधेयकों पर विचार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैठक ने सार्वजनिक खरीद दूसरा संशोधन विधेयक 2083, संपत्ति शुद्धिकरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण तीसरा संशोधन विधेयक 2083, सहकारी पहला संशोधन विधेयक 2083 और स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन विधेयक 2083 पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने बताया कि इन विधेयकों पर संशोधन प्रस्तुत करने के इच्छुक सांसद संघीय संसद सचिवालय की विधेयक शाखा में अपने प्रस्ताव दर्ज करा सकते हैं। इसी बैठक में प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य राजेंद्र खरेल के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। नेपाली कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 2056 के आम चुनाव में काभ्रे प्लानचोक से निर्वाचित खरेल का 7 आषाढ़ को उपचार के दौरान निधन हो गया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक 18 आषाढ़ गुरुवार सुबह 11 बजे होगी। पशु सेवा विभाग ने कहा है कि काठमांडू उपत्यका में कौओं के माध्यम से बर्ड फ्लू का संक्रमण फैल गया है। विभाग के महानिदेशक डॉक्टर उमेश दहाल ने बताया कि संक्रमित कौवे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर संक्रमण फैला रहे हैं। उनके अनुसार सदर चिड़ियाघर सहित कई स्थानों पर इसी कारण संक्रमण पहुंचा है। उन्होंने बताया कि कौवों में संक्रमण लगभग 21 दिनों तक सक्रिय रहता है, जिससे बीमारी तेजी से फैल सकती है। वर्तमान में काठमांडू उपत्यका के तीनों जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। डॉक्टर दाहाल के अनुसार पूरे देश के 11 जिलों में लगभग 100 स्थानों पर संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि उपत्यका में कीर्तिपुर और कागेश्वरी मनोहरा को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में है। बर्ड फ्लू पक्षियों में फैलने वाला अत्यधिक संक्रामक और अधिक मृत्युदर वाला रोग है। कौओं में संक्रमण मिलने के बाद विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने उप महानिदेशक के नेतृत्व में बर्ड फ्लू नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और संघ प्रदेश तथा स्थानीय स्तर के समन्वय से प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा है कि समय के अनुरूप नीतियों, कार्यशैली और संगठनात्मक अभ्यास में सुधार करते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन को मजबूत बनाया जाना चाहिए। आज जननेता मदन भंडारी की 75वीं जयंती के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट आंदोलन को समयानुकूल परिवर्तन करना जरूरी है। कार्यक्रम में मदन भंडारी फाउंडेशन द्वारा मदन भंडारी राष्ट्रीय पुरस्कार 2082 लेखक तथा अध्येता रमेश रुचेन राय को प्रदान किया गया। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि उनकी पार्टी ने देश और जनता के हितों के विरुद्ध कोई गलती नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के बीच अनावश्यक भ्रम फैलाया गया है। मौके पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा और जनाधिकारों के संवर्धन के लिए वामपंथी शक्तियों के बीच सहयोग आवश्यक है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल ने कम्युनिस्ट एकता को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता झरनाथ खनाल ने कहा कि कम्युनिस्ट दलों के बीच एकता का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एकता की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने पर जोर दिया। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को कल से फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। बीते माह 1 गते से इस योजना को बंद कर दिया था, जिसे अब 15 आषाढ़ से दोबारा शुरू किया जा रहा है। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुभाष प्रसाद आचार्य ने बताया कि फिलहाल ये सुविधा बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी में उपलब्ध होगी और कुछ दिनों के बाद अन्य सेवाओं में भी इसका विस्तार किया जाएगा। बता दें कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दिए गए उपचार का भुगतान न मिलने के कारण अस्पताल ने ये सेवा बंद कर दी थी। उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव ने शिक्षा को अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी से जोड़ने पर जोर दिया है। मदन भंडारी मेमोरियल कॉलेज की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और आधुनिक प्रौद्योगिकी को विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। वैदेशिक रोजगार धोखाधड़ी से जुड़े लगभग 25 वर्षों से विभाग में लंबित पड़े हजारों मामलों और जांच संबंधी फाइलों की खोज, व्यवस्थित अभिलेखीकरण और डिजिटलाइजेशन का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वैदेशिक रोजगार विभाग के अनुसार साल 2057 विक्रम संवत से लंबित पड़े मामलों और जांच से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों की खोज कर उनका व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 25 वर्षों से डंप अवस्था में पड़ी हजारों फाइलों को वर्षवार वर्गीकृत कर उनका भौतिक अभिलेख प्रबंधन किया गया है। विदेशी रोजगार धोखाधड़ी की शिकायतों में वृद्धि के बाद युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव ने मामलों को और जांच को उच्च प्राथमिकता देते हुए विभाग को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। भविष्य में मामलों और जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने की तैयारी की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सऊदी अरब के रास तनोरा में आज दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सऊदी अरब के ही नागरिक थे। हालांकि क्रैश की वजह की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। फ्रांस के नंशी शहर के पास ट्रॉम्बलेन शहर में एक प्लेन क्रैश होने से 11 लोगों की मौत हो गई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि फ्रांस के गृह मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लेन पैराशूटिंग सिखाने वाले एक स्कूल का था। प्रशासन ने एजेंसी को बताया कि इस हादसे में पायलट और सभी 10 यात्रियों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्लेन में स्काई डाइविंग ट्रिप पर जा रहे लोगों का एक ग्रुप सवार था। पुलिस ने लोगों से ट्रॉम्बलेन में एयरपोर्ट के पास के इलाकों में जाने से पूरी तरह से बचने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा ने बजट से संबंधित आर्थिक विधेयक 2083 और राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2083 किए पारित। सड़क दुर्घटनाओं में कमी, कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम से उत्पन्न समस्याओं के समाधान सहित विभिन्न मुद्दों पर सांसदों ने किया सरकार का ध्यान आकृष्ट। पशु सेवा विभाग ने काठमांडू उपत्यका में बर्ड फ्लू फैलने में कौओं को बताया कारण। और सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 14 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी LTE मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: मनोरञ्जन र विविध जानकारी सँगै यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला।
6: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट सिलसिला।
5: सिलसिला।
6: रेडियो पत्रिका सिलसिलामा प्राविधिक मित्र पराग पोखरेल सहित साथी मनुका कुमार अनि म हरिगिरीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। रेडियो पत्रिका सिलसिला हरेक आइतबार बिहान 11 बजेको समाचार पछि र यसका साथै आइतबारै राति 10 बजेको हिन्दी भाषाको समाचार पछि पुनः प्रसारणमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट साप्ताहिक रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न सेगमेन्टहरू रेडियो पत्रिका सिलसिलामा हुनेछन्। अझ भनौ, खोजमूलक सामग्रीको आधारमा यो कार्यक्रमलाई हामीले तयार पारेका हुन्छौँ।
5: कार्यक्रममा हामीले मनोरञ्जनका लागि गीत, विज्ञान उपयोगी सामग्री, स्वास्थ्य चर्चा, सामान्य ज्ञानका जानकारी, प्रेरक एवं रोचक प्रसङ्ग लिएर आउने गर्दछौ। कार्यक्रममा समावेश हुने सामग्री विभिन्न सञ्चार माध्यम, अनलाइन समाचार एजेन्सी र न्यू मिडियाबाट साभार स्रोत हुनेछन्।
6: त्यसैले यो कार्यक्रमलाई पूरा समय सुन्नका लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौ।
5: रोचक र ज्ञानवर्धक सामग्रीको संगालो, यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला।
6: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालमा सिलसिला।
5: सिलसिला।
6: अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ। अब तपाईँहरू माझ राख्दैछौँ विभिन्न विज्ञान उपयोगी प्रसङ्गहरू। जुम्ल्याहा बच्चा कसरी हुन्छन् यो बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिने प्रक्रिया प्राकृतिक रूपमा दुई फरक तरिकाले हुन्छ। महिलाको डिम्बाशयबाट निस्कने डिम्ब र पुरुषको शुक्राकृतिको मिलन हुने फरक अवस्थाका आधारमा जुम्ल्याहा बच्चाहरू दुई प्रकारका रहेका हुन्छन्। एउटै स्वरूपका जुम्ल्याहा, यो प्रक्रियामा एउटा मात्र डिम्ब र एउटा मात्र शुक्राकृत बीच निषेचन हुन्छ। निषेचन भइसकेपछि उक्त एउटा डिम्ब जसलाई हामी जाइगोट भन्ने गर्दछौँ, जाइगोट दुई भागमा विभाजित हुन्छन् र दुईवटा अलग अलग भ्रूण बन्दछन्। विशेषत यस्ता बच्चाहरूको आनुवंशिक गुण 100% रहेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरूको अनुहार, स्वभाव, लिङ्ग जस्तो कि दुवै छोरा वा दुवै छोरी दुरुस्तै मिल्ने हुन्छन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ फरक स्वरूपका जुम्ल्याहा। यो प्राकृतिक रूपमा बढी सामान्य रूपमा हुने प्रक्रिया हो। सामान्यतया महिलाको महिनावारी चक्रमा एउटा मात्र डिम्ब निस्कन्छ, तर कहिले काहीँ हर्मोनको उतार चढाव वा अन्य कारणले एकैपटक दुईवटा अलग अलग डिम्बहरू निस्कन्छन्। यी दुवै डिम्बलाई दुईवटा छुट्टा छुट्टै शुक्रकीटले निषेचित गर्दछ। यस्ता बच्चाहरू दुई अलग अलग समयमा जन्मेका दाजुभाइ वा दिदीबहिनी जस्तै हुन्छन्। उनीहरूको अनुहार दुरुस्तै नमिल्न पनि सक्दछ र उनीहरू एउटै लिङ्गका अर्थात् दुवै छोरा वा छोरी वा फरक लिङ्गका छोरा वा छोरी पनि हुन सक्दछन्। जुम्ल्याहा बच्चा कस्तो महिलाबाट जन्मन्छ त यो बारेमा पनि जानकारी दिँदैछौ। यदि महिलाको परिवारमा विशेष गरी आमाको तर्फबाट जुम्ल्याहा सन्तान जन्माइएको इतिहास छ भने जुम्ल्याहा बच्चा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। 30 वा 35 वर्ष भन्दा बढी उमेरका महिलाहरूमा हर्मोनको प्रभावका कारण एकैपटक एक भन्दा बढी डिम्ब निस्कने सम्भावना बढी हुन्छ। लामो समयसम्म गर्भ निरोधक चक्की खाएर छोडेको सुरुका महिनाहरूमा शरीरले बढी डिम्ब उत्पादन गर्ने कार्य गर्दछ। केही अध्ययनका अनुसार औसत भन्दा अलि बढी तौल वा उचाइ भएका महिलाहरूमा जुम्ल्याहा बच्चा हुने सम्भावना अलिक बढी पाइएको छ। बाँझोपनको उपचारका लागि प्रयोग गरिने औषधिहरू वा IVF अर्थात् इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन वा टेस्ट ट्युब बेबी प्रविधि अपनाउँदा एक भन्दा बढी भ्रूणहरू पाठ्यक्रममा प्रत्यारोपण गरिने हुनाले जुम्ल्याहा वा तिम्ल्याहा बच्चा जन्मने सम्भावना पनि धेरै उच्च रहेको हुन्छ। अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ।
5: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम सिलसिला। सबैभन्दा सानो चरा हमिङ बर्ड कस्तो हुन्छ त यो प्रसङ्ग अबको लागि। संसारको सबभन्दा ठूलो चरा सुतुर मुर्ग हो भने सानो चरा हमिङ बर्ड हो। हमिङ बर्डको तौल 1.6 ग्राम छ। यसको धेरै प्रजाति छन्। त्यसमा पनि सबभन्दा सानो बी हमिङ बर्ड हो। यसको लम्बाइ 2 इन्च जति हुन्छ। क्युबा तथा पाइन्सका टापुहरूमा यो चरा पाइन्छ। हमिङ बर्डको उडाई विशेष किसिमको हुन्छ। यो चराले 1 सेकेन्डमा 55 पटकसम्म पखेटा फड्कार्न सक्दछ। पखेटा फड्कार्दा एक विशेष किसिमको आवाज निकाल्दछ। शरीरको तुलनामा यसको चुच्चो निकै लामो हुन्छ। यसले फुलको रस खुब मन पराउँछ। पातमा नबसिकनै फुलको रस चुस्नु यसको अर्को विशेषता हो। पखेटाको तेज गतिले हावामा नै यो स्थिर भएर अडिन सक्दछ। यसले गुममा परेको कलात्मक आफ्नो गुण बनाउँदछ। एक पटकमा 2 वटा सेता अन्डा पारी यसले सन्तान जन्माउँछ। यो आफू सानो भए पनि ठूला पंक्षीको आक्रमणलाई विफल बनाउँदछ।
6: अब यहाँ अर्को प्रसङ्ग राख्दैछौ। कस्तो बेला पर्छ इन्द्रेणी यो बारेमा जानकारी दिँदैछौ। इन्द्रेणीलाई आकाशमा देखिनका लागि घाम लाग्ने र पानी पर्ने अवस्था एकैसाथ हुनु पर्दछ। यो प्रकाशको परावर्तन अर्थात् रिफ्लेक्सन र आवर्तन अर्थात् रिफ्र्याक्सन र छरिने अर्थात् डिस्पर्सन प्रक्रियाका कारण बन्ने एक सुन्दर प्राकृतिक दृश्य हो। कस्तो अवस्था र समयमा इन्द्रेणी राम्रोसँग देखिन्छ? आकाशमा पानी परिरहेको हुनुपर्छ वा भर्खरै पानी परेर रोकिएको हुनुपर्दछ, जसले गर्दा हावामा पानीका साना साना थोपाहरू तैरिरहेका हुन्छन्। यी थोपाहरूले प्राकृतिक प्रिजमको काम गर्दछन्। इन्द्रेणी पर्नका लागि पानी परिरहेको बेला वा लगत्तै एकातिरबाट दर्विलो घाम लागेको हुनुपर्दछ। इन्द्रेणी दिउँसो भन्दा बिहान र बेलुकी पख बढी स्पष्ट र ठुलो देखिन्छ। सूर्य आकाशमा जति तल क्षितिजको नजिक हुन्छ, इन्द्रेणी त्यति नै प्रष्ट र माथिसम्म फैलिएको देखिन्छ। बिहान पख लाग्ने इन्द्रेणी खास गरी सूर्य पूर्वमा हुँदा इन्द्रेणी पश्चिम आकाशमा देखिन्छ भने बेलुकी पखको समयमा सूर्य पश्चिममा हुँदा इन्द्रेणी पूर्व आकाशमा देखिन्छ। केवल वर्षाको समयमा मात्र होइन, ठुला झरनाहरू, पानीका फोहराहरू वा बगैँचामा पाइपबाट पानी छर्किँदा पनि यदि घामको प्रकाश सही कोणबाट परेको छ भने सानो आकारको इन्द्रेणी सजिलै पनि देख्न सक्दछौ।
5: कार्यक्रम सिलसिलामा अबको लागि भने फ्लोराइडले हाम्रो दाँत कसरी सफा गर्दछ त भन्ने प्रसङ्ग। फ्लोरिन नामक तत्व पानीमा एकदमै सूक्ष्म मात्रामा पाइन्छ। यसले दाँतको बाहिरी तहमा मा रहेको पातलहरू चम्किलो कडा तह जसलाई इनामेलको रूपमा चिनिन्छ। वास्तवमा इनामेलमा विभिन्न किसिमका अकार्बनिक खनिज पाइन्छन् जसको सुरक्षा गर्ने काम फ्लोरिनले गर्दछ। फ्लोरिन कम भएका खण्डमा दाँत फुस्रिने र खिएर जाने हुन्छ, तर फ्लोरिनको मात्रा बढी भएमा पनि दाँतका लागि त्यति फाइदाजनक हुँदैन। फ्लोरिन स्वतन्त्र रूपमा अस्तित्वमा रहन नसक्ने भएकोले यसलाई टुथपेस्टहरूमा फ्लोराइडका रूपमा राखिन्छ, जुन फ्लोराइड फ्लोरिनमा परिवर्तन हुन्छ। यसरी फ्लोराइडले हाम्रो दाँत बलियो बनाउँदछ।
6: फोटोक्रोमाटिक चस्माको सिसा सूर्यको प्रकाशमा किन कालो हुन्छ? अब यो बारेमा जानकारी दिँदैछौ। फोटोक्रोमाटिक चस्माको लेन्समा सिल्भर हेलाइड, सिल्भर आयोडाइड र सिल्भर ब्रोमाइडका सूक्ष्म क्रिस्टलहरू रहेका हुन्छन्। जब यी क्रिस्टलहरू सूर्यको प्रकाश विशेष गरी परावैजनी किरणको सम्पर्कमा आउँछन् तब यिनीहरूमा रासायनिक बन्धनहरू टुक्रिन्छन् र सिल्भरका साना कणहरू छुट्टिएर जान्छन्। यी छुट्टिएका सिल्भरका कणहरूले लेन्सलाई ढाक्दछन् जसका कारण चस्माको सिसा कालो वा गाढा देखिन्छ। जब चस्मालाई सूर्यको प्रकाशबाट हटाइन्छ यी कणहरू पुनः आपसमा मिलेर पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छन् र चस्मा फेरि रङहीन वा सेतो देखिन्छ।
5: मालिस गर्दा थकाई किन कम हुन्छ? यो प्रसंग अबको लागि। हामीले धेरै काम गर्दा शरीरमा ल्याक्टिक एसिडको उत्पादन बढी हुन्छ जसले गर्दा शरीरमा रक्त संचार तथा अक्सिजनको आवागमनमा बाधा पुग्न जान्छ। यसले गर्दा नै हामीलाई थकानको महसुस हुन्छ। तर थाकेको भागमा हल्का मालिस गर्दा रक्त संचार सहज हुन्छ र अक्सिजन आपूर्तिमा पर्न गएको अवरोध पनि खुला हुन्छ। त्यसैले हामीलाई थकाई कम भएको महसुस हुन्छ।
6: अब यहाँ अर्को प्रसङ्ग छ, मानिसहरूको सम्झना शक्ति किन नष्ट हुन्छ त? अब यो बारेमा जानकारी दिँदैछौ। बढ्दो उमेरमा स्नायु कोशिकाहरू जसबाट मस्तिष्कको निर्माण भएको हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै तिनीहरू मृत हुन लाग्दछन् जसबाट मानिसको कार्यक्षमतामा कमी आउन थाल्दछ। जुन आयुमा यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यो मानिसै पछि फरक फरक हुन्छ। एउटा वयस्क व्यक्तिमा उति नै स्नायु कोशिका हुन्छन् जति ऊ जन्मिँदाखेरि रहेको हुन्छ। यी कोशिकाहरू शरीरको वृद्धि अनुसार बढ्दै जाने भने होइनन्। वास्तवमा कुनै पनि व्यक्ति उसको आयुबाट वृद्ध हुँदै जान्छ भने उसको स्नायु कोशिकाहरू बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छन्, किनभने यी कोशिकाहरू विभाजित हुँदैनन् र मृत कोशिकाको स्थानमा नयाँ कोशिकाहरू पनि बन्दैनन्। यसको स्थान ग्लायल कोशिकाहरूले लिने गर्दछन्। 70 र 80 उमेरमा लगभग 1/4 स्नायु कोशिकाहरू समाप्त भएर जान्छन्। यही कारणले हो कि वयोवृद्धहरूको साथ साथ मनुष्यको सम्झना शक्ति कम हुँदै जानु। कहिलेकाहीँ दुर्भाग्यवश मनुष्यको स्नायु कोशिकाहरू एक एक निष्क्रिय पनि हुन जान्छन् जसले गर्दा मानिसको सम्झना शक्ति बिस्तारै बिस्तारै नष्ट भएर जान्छ।
5: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सिलसिला। विज्ञान उपयोगी सामग्री समेट्ने क्रममा डन्डी फोर किन र कसरी आउँछ यो प्रसङ्ग छ। हाम्रो छालामा भएका पसिना निस्कने ससाना प्वालहरूमा थुप्रिएर रहने तेल ब्याक्टेरियाहरू र मृत कोषहरूको कारणले डन्डी फोरको निर्माण हुन्छ। हाम्रो छालामा रहेका फोलिकलहरू जसलाई हामी रौँ निस्कने ससाना प्वालहरू भन्दछौ तिनै प्वालहरूमा कोषहरू मर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। यी मृत कोषहरूलाई तेल ग्रन्थीहरूले उत्पादन गर्ने तेलले छालाको बाहिर सतहसम्म पुर्याउने काम गर्दछ। तेलको उत्पादन बढी हुने छालाहरूमा अत्याधिक तेलको कारण यी मृत कोषहरू थुप्रिन पुग्छन् र प्वाललाई बन्द गरिदिन्छन्। यसको कारणले तेल ग्रन्थीले उत्पादन गर्ने तेल बाहिर निस्कन पाउँदैन। यदि थुप्रिएका मृत कोषहरू बाहिरबाट देखिएमा त्यसलाई ब्ल्याक हेड भनिन्छ भने बाहिरबाट नदेखिएमा त्यसलाई व्हाइट हेड भनिन्छ। छालामा व्हाइट हेड निर्माण भएमा फोलिकल प्राकृतिक रूपमै पाइने ब्याक्टेरियाहरूले मृत कोषहरूलाई एसिडमा परिणत गर्छन्। एसिडको मात्रा बढ्दै जाँदा फोलिकल भित्र चाप उत्पन्न हुन्छ जसको कारणले बन्द भएको प्वाल फुट्छ र छालामा संक्रमण हुन्छ। संक्रमणको कारणले त्यस ठाउँमा रगत जम्मा हुन जान्छ र छाला रातो हुन्छ। यसरी हाम्रो अनुहारमा डन्डी फोरको निर्माण हुन्छ।
6: अब यो सामग्री पछि तपाईँहरूमा राख्दैछौ प्रमोद खरेलको स्वरमा एउटा गीतलाई। गीतकारमा हुनुहुन्छ शंकर पाण्डे अनि संगीतकारमा सन्तोष श्रेष्ठ। यो गीत सुन्दै गरौं। गीतपछि हामी अन्य विषय सामग्रीका साथ आउनेछौ। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला।

रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज। राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।